सदगुरु प्रसाद उतार खासे दस्तखत का पातशाह दसवीं अकाल गुरु की रिचा हमने सर्वलोक दी रिचा हमने सर्वकाल जी दी रिचा हमने सर्वलोक जी दी सदा रिचा हमने।

पावड़ी वड़े के आवड़ी आया कुछ कहना पहन जाए। सोकरता कादर करीम दे जी यार जी संभाए साईकार कमा।

जीव सब कुछ जान ला, सब कुछ तेरा है, वस तेरा घर पल तेरा है, घर आनंद बधाई तो घर माण मता तेज अपने आप जन सर्व कला भरपूर दी सिजत कता नानक दास दास दे आ गए गुणवत्ता सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत मात दिवस रात दाई दाया खेले सकल जगत।

दीर्घ आयु बक्षणी, देह रोगता बक्षणी, अंग संसायोना शरण जीत गावर जी, सर्व ज्योत सिंह।

अंदर दिल्ली में शीश गंज रकाबगंज बाला साहेब बंगला साहेब सतो चंडिया साहेबा दी दे सुख दे दर्शन दीदार मेले बलारे।

0: गुरु पंथ खालसे दी दिनो दिन चढ़दी कला रखनी सच्चे पातशाह जी महाराज।
1: गुरु प्यारी सात संगत जीओ, हुण धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिया दी पावन लड़ीवार कथा विचार होवेगी। कथा विचारां नूं सरवण करके अपना जीवन सफला करो जी।

अष्ट माल का सत संग लाए पुन आयो हिंडोल पंच नार संग अष्ट सुत उठ हितान कलोल गायन तार मिला वही तेलंगी देव करी आई बसंती संदूर सुहाई सरस अहिरी।

प्रसाद तोमर छंद हर जन्म मरण विहीन दस चार चार प्रवीण अकलंक रूप अपार अंशिज तेज उदार अनभिज रूप दुरंत।

कई देश देश फिर अंत कई एक ठौर स्थान्त कहूँ करत जल मह जाप कहूँ सहत तन परताप।

त्वा प्रसाद लघुनराज छंद जले हरि थले हरि उरे हरि बने हरि गिरे हरि गुफे हरि छिते हरि नभे हरि इहां हरि उहां हरि जिमी हरि जमा हरि अलेख हरि अभेख हरि अदुख हरि अद्वैख हरि अकाल हरि अपाल हरि अछेद हरि अभेद हरि अजंत्र हरि अमंत्र हरि सोतेज हरि अतंत्र हरि अजात हरि अपात हरि अमित्र हरि अमात हरि अरोग हरि अशोक हरि अभरम हरि।

ब्रिछस्तु हि पतस्तु हि चितस्तु हि ऊर्ध्वस्तु हि भजस्तु वं भजस्तु वं रटस्तु वं ठटस्तु वं जिमीतु हि जमातु हि मकीतु हि मकातु हि अभूतु हि अभतु हि अछूतु हि अछतु हि जतस्तु हि व्रतस्तु हि गतस्तु हि।

जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत है, धूर के कणों का फेर धूर ही समाहेंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहाहेंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होए, ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। केते काछ माछ केते उनको करत भज, केते अच वच होय सपच उड़ जाहेंगे। केते नब बीज अच पच को करेंगे भज, केतक प्रतच होय।

तेज में अतेज जैसे तेज लीन ताहि तयो भज सब ताहि मैं समाहिंगे। कुकत फिरत कित रोवत मरत कित जल में डुबत कित आग में जरत है। कित गंग वासी कित मदीना मक्का निवासी के तक उदासी के ब्रह्माई फिरत है। करवत सहत कित भूम में गड़त कित सुअ पे चढ़त कित दुख को भरत है। ज्ञान में उड़त कित जल में रहत कित ज्ञान के विहीन जग जा रही मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे दानव बटे बोध हारे बुद्धक प्रबोध हारे जापसी घस हारे चंदन लगाए हारे चुआजार पूज हारे पाहन चढ़ाए हारे लापसी गाह हारे गोरन मनाए हारे मटी मटली पहारे भीतन लगाए हारे छापसी गाए हारे गंधर्व बजाए हारे किन्नर सब पच हारे पंडित दपन।

न मोहं न मातं न कर्मं न भर्मं न जन्मं न जातं अद्वै खंग पे खंग जो निसरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे परयं परापरं प्रज्ञा प्रकाशीय छेदं गच्छयाद् अद्वै अविनाशी न जातं न पातं न रूपं न रंगे नमो आद भंगे नमो आद भंगे किते कृष्णं से की

दंडे अमंडे प्रचंडे प्रमाथे न जाते न पाते न सत्र न वित्र सबूते भविखे भवाने चित्रे नारायंग नरंगंग न रूपंग न रेखंग न लोभंग न जोभंग भूतंग अभेखंग न सत्रंग न मित्रंग न नेहंग न गेहंग सदेवंग सदा सर्व सर्वत्र स्नेहंग न कामंग न क्रोधंग न लोभंग न मोहंग जो नी अच्छयाद अद्वय जोहंग न जन्मंग न मरणंग न बरणंग न व्याधंग न रोगंग न सुखंग अभय निर्विखादंग अछेदंग भेदंग कर्मंग कालंग खंडंग बंडंग प्रचंडंग पालंग न तातंग न मातंग न जातंग न कायंग न नेहंग न गेहंग न भर्मंग न भायंग न रूपंग न भूपंग न कायंग न कर्मंग न त्रासंग न प्रासंग न भेदंग न भर्मंग सदेवंग सदा सिद्ध बिरदंग स्वरूपे नमो।

ग्रहं कहूं देह दुखं कहूं औषधि रोग के सुख सुखं कहूं देव विद्या कहूं दैत बानी कहूं जज गंधर्व के नर कहानी कहूं राजसी साधकी तामसी हो कहूं जोग विद्या थरे तापसी हो कहूं रोग रहता कहूं जोग जोग तं कहूं भूम की भुगत मैं भरम भुगतं कहूं देव कन्या कहूं दानवी हो कहूं जज विद्या धरे मानवी हो कहूं राजसी हो कहूं राज कन्या कहूं शिष्ट की पृष्ठ की रिष्ट पन्या कहूं वेद विद्या कहूं व्योम बानी कहूं कोक की काव कथा कहानी कहूं अदर सारंग कहूं भद्र रूपं कहूं मधुर बानी कहूं क्षुद्र सर

दसे खं कहूं ब्रह्म धर्म कहूं वृद्ध अवस्था कहूं बाल कर्म कहूं ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूं नेह देहं कहूं त्याग गृहं कहूं जोग भोगं कहूं रोग रागं कहूं रोग हर्ता कहूं भोग त्यागं कहूं राज साजं कहूं राज रीतं कहूं पूर्ण प्रज्ञा कहूं परम प्रीतं कहूं अरबी तोर की पारसी हो कहूं पहलवी पस्तवी संस्कृति हो कहूं देश भाख्या कहूं देव बानी कहूं राज विद्या कहूं राजधानी कहूं मंत्र विद्या कहूं तंत्र सारं कहूं जंत्र रीतं कहूं शस्त्र धारं कहूं होम पूजा कहूं देव अर्चा कहूं पिंगला चारणी गीत चर्चा कहूं बीन विद्या कहूं गान कीर्तन कहूं मलेच्छ भाख्या कहूं वेद रीतं कहूं नृत्य विद्या कहूं नागबानी कहूं गारडू

सदीव हर्ता सनात आसन अडोल अनभूत करम दाता दयाल अनभूत धर्म। जे सत्र मित्र नहीं जन्म जात जेह पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात जेह करम भरम नहीं धर्म ध्यान जेह नेह गेह नहीं ब्योतबान जेह जात पात नहीं सत्र मित्र जेह नेह गेह नहीं चिहन चित्र जेह रंग रूप नहीं राग रेख जेह जन्म जात नहीं भरम भेख जेह करम भरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं पितृ मात जेह नाम थाम नहीं बर्ग ब्याद जेह रोग शोक नहीं सत्र साध जेह त्रास वास नहीं देह नास जेह आद अंत नहीं रूप रास जेह रोग शोक नहीं जोग जुगत जेह त्रास आस नहीं भूम भुगत जेह काल ब्याल कट्यो न अंग अच्छा स्वरूप खाया भंग जेह नेत नेत उचरंत वेद जेह अलख।

परखा सहंत कई कलब एक आसन वितंत कई जतन जोग विद्या विचार साधंत तद पावत न पार कई उर्ध बाह देशन भ्रमंत कई उर्ध मध्य पावक झुलंत कई सिमृत शास्त्रत उचरंत वेद कई कूक काव कथत कते कई अगन होत्र कई पवन हार कई कर्त कूट मृत को हार कई कर्त साक पत्र भच्छ नहीं तद देव।

0: प्रसाद
1: जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय

दीनन की प्रतपाल कर नित संतु बार गनी मन गारे बच पशु नक नाक नरा देव सर्व समय सबको प्रतपार है। पोखत है जल मैं थल मैं पल मैं कल के नहीं करम बिचारे दीन दयाल दयानित दोखन देखत है प्रदेत नहार है। दाहत है दुख दोखन कौदल दुजन के पल मैं दल डारे खंड अखंड प्रचंड पहारण पूर्ण प्रेम की प्रीत संभार है। पार न पाए सके पदमापद वेद कते वेद उचारे रोज ही राज बिलोकत राजक रोख रोहान की रोज निटार है। कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भविख भवान बनाए देव देव खपे अहमेव न बेव लख्यो भ्रम स्यो भरमाए। वेद पुराण कतेब कुरान हसेब थके कर हाथ न आए पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना पत स्यो गिन श्री पदमा पत पाए। आद अनंत अगात द्वेक्षो भूत भविख भवान अभय है अंत विहीन अनाथम अबादाग दुख छिद्र अचय है। लोगन के करता हरता जल मैं थल मैं भरता प्रभ है दीन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्री पदमा पत ए है। काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय है देह विहीन स्नेह सबोधन नेह विरक्त अगेह अच्छय है। जान को देत अजान को देत जमीन को देत जमान को दह है काहे को डोलत है तुम्हरे सुत।

भेव तुम्हें सब ही कर ध्यावे भूमा का सपताल रसातल जाच्छ भुजंग सब सन्यावे पाए सके ने पार प्रभाहूं को ने तही ने तह वेद बतावे खोल तके सब ही खुजिया सुरहार परे हर हाथ न आवे नारद से चतुरानंद से रुमनारिक से सब हूँ मिल गायो भेद कतेव न भेद लखे सब हार परे हर हाथ न आयो पाए सके ने पार उमापत सिद्ध सनात सनंतन ध्यायो ध्यान धरो तह को मन में जह को अमितोज सब जग छायो वेद पुराण कतेव कुरान अभेद नृपान सब बचहारे भेद न पाए सक्यो न भेद को खेदत है अनछेद पुकारे राग न रूप न रेख न रंग न साक न शोक न संग तिहारे याद अनाथ अगाध बेगद वैग जप्यो तिन्हि कुल तारे तीरथ कोट किए स्नान दिए बहुदान महाव्रत धारे देश फिरो कर भेष तपोधन केस धरे न मिले हर प्यारे आसन कोट करे अष्टांग धरे बहुन्यास करे मुहकारे दीन दयाल काल भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे त्व प्रसाद कबित अत्र के चलैया चित छत्र के धरैया छत्र धार्यो के छलैया महासतरण के साल है दान के दिवैया महामान के बढ़ैया अवसान के दिवैया है कटैया जम जाल है युद्ध के जितैया।

पूर्वी न पार पावे हिंगुला हिमाल ध्यावे गुर कर दिजी गुण गावे तेरे नाम है। जोगि जोग साधे पौन साधना कि तेक बांधे यार बके यार बिया राध तेरे नाम है। फरा के फिरंगी माने कंधारी कुरे सी जाने पच्छम के पच्छमी पछाने निज काम है। मर डाम गेल तेरी मन सो तपस्या कर दीड़ वैद्य लंगी पहचाने धर्म धाम है। बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिलवाली तेरी आज्ञा में चलत है। रूह के रूहेले माग देश के मंगेले वीर बंग से बुंदेले बाप पुंज को मलत है। गोखा गुण गावे जिन मचीन के शीस न्यावे ते बते थे आए दुख देह के दलत है। जिन्हें तो है दायो तिन्हें पूर्ण।

काल हूं के काल है के शत्रुन के साल है के मित्रन को भूगत के वृद्धता की बासी है जो को हूं को जंत्र है के तेज हूं को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्धता को वास है के बुद्ध हूं को घर है देवन को देव है निरंजन अभेव है अदेवन को देव है के शुद्धता को सार है जान को बचैया है मान को जीवैया है जमजाल को कटैया है के कामना को कर है तेज को प्रचंड है अखंडन को खंड है महीपन को मंड है के स्त्री है ना नर है विश्व को भरण है के आपदा को हरण है के सुख को करण है के तेज को प्रकाश है पाई है न पार पर अवार हूं को पार जगो की जत विचार सो विचार को निवास है हिंगुला हिमालय गावे हम बसी हलब विधा।

अंजन विहीन है निरंजन प्रवीण है के सेवक अधीन है कटैया जम जाल के देवन के देव महादेव हूं के देवनाथ भूम के भुजैया है मुहैया महाबाल के राजन के राजा महासाज हूं के साजा महाजोग हूं को जोग है धरैया द्रुम छाल के कामना के कार है के बुद्धता को हर है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के छीर कैसी छीरावत छाछ कैसी छतरा नेर छपा कर कैसी छप काल इंद्र के कूल के हंसनी सिसी हारू मही रसी हुसन बाद गंगा कैसी धार चली सातो सिंध रूल के पारसी पलाऊ गढ़ रूपा कैसी रामपुर सोरासी सुरंगाबाद निके रही झूल के चंपासी चंदेरी कोट चांदनी सी चंदगढ़ कीरत तिहारी रही मालती सी फूल के फटक सी के लाश कमाऊ गढ़ कांसी पुर सी सासी सुरंगाबाद नी के सोहियत है हिमा सी हिमालय हर हार सी हलब्बा ने हंस कैसी हाजीपुर देखे मोहियत है चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्रगिर चांदनी सी चंदगढ़ जोन जोहियत है गंगा सम गंग धार बकांसी बिलंदाबाद कीरत तिहार के उजियारी सोहियत है फरासी फिरंगी फरासी सके दुरंगी मकरान के ब्रतंगी तेरे गीत गायत है फकरी गंधारी गोर कखरी कर दे जाचारी पौन के आहारी तेरो नाम ध्यायत है पूरब पलाऊ काम रूप कमाऊ सर्व ठौर मैं विराज जहां जहां जाइयत है पूर्ण प्रतापी चंद्र मंत्र ते अतापी नाथ

बहुरा नमस्कार श्री खड़ग को करो सोहित चितलाय पूरन करो ग्रंथ तुम्हें करो सहाय त्रिपंक्ति छंद श्री अकाल जी की उस्तक

चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं भव सुभं सर्वदा सर्व युक्ते तो काल प्रणाशी दयालन स्वरूपे सदा अंग संगे अपनम विभूते देखते गोपते नुसरपिदन आपते नानक गुरु गोविंद सिंह जी त्रिय अकाल पुरख जी सहायक दरबार में तेरो दरबारा सचखंड बछैन अहंकार।

सच्चे त्रिखंड सच्चे ब्रह्मंड सच्चे त्रिलो सच्चाकार सच्चे त्रिकरणे सर्व विचार सच्चा त्रम सच्चा दीवान सच्चा त्राक्रम सच्चा प्रमाण सच्चा त्राक्रम सच्चा निशान सच्चे तुधा कल करोड़ सच्चे सब